0: कब?
1: कबीर दास जी कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज ही करो, जो काम आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय भी आ सकता है। तो तुम अपना काम कब करोगे?

सच्चाई के मार्ग चलेंगे, गांधी जी का मार्ग चुनेंगे। सच्चाई के मार्ग चलेंगे, गांधी जी का मार्ग चुनेंगे। हम बच्चे दिल के हैं सच्चे, हम बच्चे दिल के हैं सच्चे। इस विश्व के विहंग है हम, अपने मन के मालिक है हम, अपने मन के

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Go retro with Akashvani Telugu.

0: Manı Cemerence mi?
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: గుర్తుకొస్తున్నాయి గో రెట్రో విత్ ఆకాశవాణి తెలుగు.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय एनम नान தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल

बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
3: क्या
0: 1993 फिल्म

0: साहिबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
3: जी।
2: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
3: अरे बाप रे।
2: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
3: ये लो।
2: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
3: हीरोइनें भी हैं,
2: हीरोइनों के भी डेटे हैं और ठहर गए।
3: अब
2: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
3: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
2: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ।

0: पिक्चर ने डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, वे जो आते रहे, तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो ये प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: सबके साथ। तो वहीदा जी से कहने लगे, यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा, तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब,
0: रमेश तलवार से, वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी, 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं, एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: इज वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या

0: का अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने।
1: अच्छा,
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटुन।
1: सागर साहब लिख रहे थे?
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी,
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: तो अभी इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी। कुलदीप जी आ जाते बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे। रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो का बाकी देख लेंगे चीज़ें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: ज्यादा हुई, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे?
1: हाँ हाँ।
0: हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूँगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब था। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए? मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है?
0: कहानी नहीं।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार साहब,
0: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए, वो मान गए। यश जोहर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोहर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग गए।
1: हाँ हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया,

0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज अ राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने की। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बनाते वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: मशाल मशाल का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: ओ
0: मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: तो उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से। जावेद साहब लिखने वहाँ चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहाँ से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता था मैं एक ही पिक्चर लिख रहा था उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो उस तरह सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला करूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश भल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
0: ओहो,
1: मनमोहन किसका बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है।

0: को पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई,

0: तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाने भी दो तीन रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या दो दो चार नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने दो तीन रिकॉर्ड कर लिए थे और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बताया,
0: दिलीप साहब को बता दी।
1: ओहो गजब,
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
1: हाँ,
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले यारा,
1: अच्छा
0: यारा
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में आई,
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूँगा, उसमें बैठूँगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास में सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट, श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है, और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्हें कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये तो नहीं हो सकी, और डेटें पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचते हैं। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा यह है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा,

0: ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहाँ आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें हुई,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चाहे चावला साहब, ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई नीचे, तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज़ यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पर लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: मुझे तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज़्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
1: करते हैं। देखते हैं, नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग ओके, जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए आप, बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों के।

0: date to conduct the visit.
1: Sathiyo, aaj 10 Mai ki aitihasik tarikh hai. 1857 mein aaj ke hi din swatantrata sangram ki pehli chingari phuti thi. Samay ke saath ye chingari ek badi jwala mein badal gayi. जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया. शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है. इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है.
0: In his speech, the Prime Minister also addressed the global challenges such as the unrest in West Asia. He urged the people of India to practice restraint, conserve resources and uphold their duties to help the nation navigate global crisis, comparing the spirit to the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: हमारे यहाँ कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्. अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है. सेवा परमो धर्म है. ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है. पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है.
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं. हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं. भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है. हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है. हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं. देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है.
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं. आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं.
0: द प्राइम मिनिस्टर इन रीसेंट ईयर्स हैज रिपीटेडली लिंक्ड वेलनेस and preventative health care with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management

0: management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education, and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighbouring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड द डेवलपमेंट ऑफ द जाहिराबाद इंडस्ट्रियल एरिया एज पार्ट ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव टू बिल्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड आईसीटी नेटवर्क्स. लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड.
1: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है.
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export-oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही. मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें.
0: The final major project of the day focused on